आकाशवाणी इम्फाल निंथौखोंजम सुनीना पाउ पाजरी अहानबद मरोइब पाउ मुख्यमंत्री ने हाई पीएम स्वनिधि स्कीम म्यू क्या की हिंगना की लंबी चाउना मतें पांगले सिक्योरिटी फोर्स ने थीबोम की थबक चथब लालहौब अहम ड्रग ललोब म्यू अनी फारे भारत थाउ चाना थकनब पोलम हार अतई तंगाइफद पोलम वातन फंगनगनी सरकार ने हाई मुख्यमंत्री युमनाम खेमसा पीएम स्वनिधि सही तरुक मपुंग फारकपद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थगत्व फोंदोख्रे सोशल मीडिया थगत्व वारोल प्रधानमंत्री की मिदेंग मखा स्ट्रीट वेंडर सिंगी याइफनब पाइखलिब थौरांग असिना लैबाग असिगी चाखोटपगी लंबीद अमतु ओइन चतमिनदुना मांगजिल थाब गमले कोविड 19 मतमद हौदोकिब पीएम स्वनिधि असिना स्ट्रीट वेंडर मियोय कयाद सेलगी तेंबांग फंगनदुना अनोगब मायोनमद पुरक पंगमखे स्कीम असिना मियोय क्यागी हिंगनबगी लंबीद चाउना मतेंग ओइदुना सेल तुमगी फिबम फगतहली मसिमक आत्मनिर्भर भारत ओइनबगी लंबी ओइरे मुख्यमंत्री नहाय स्कीम असिना सही तरुक मपुंग फारकप असिदा बेनिफिसरी लाख यांकै हुमदोइदा सेंथं पिथदुना तेंबांग्रे स्कीम असि फंगकिबा बेनिफिसरी सिंगी मनुंगद चादु हुमबुद्रादि सोथरब कांगलुपकी मियोय सिनि हायरे मुख्यमंत्री युमनाम खेमसाना जनरल एन एस राजासुब्रमणिना इंडियन आर्म फोर्सेस की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नौ नौरपद नुब फोंदोरकले मुख्यमंत्री ने हाय राजासुब्रमणि की मौद कथोप पुनिंग चंग मोयमें तोान तोान ऑपरेशन की एक्सपीरियंस कयासु लेरब ऑफिसर लुचिंग की चपचाब गुण अदुम श्री सुब्रमणि चेली हायरे सिक्योरिटी फोर्स ने थीबोम की तबक चथब लालहब अहम ड्रग ललोब मोय अनी फारे पुलिस की पाउन हाय सिक्योरिटी फोर्स ने राज्य सिंग तंपाक की जिला सिंह थीबोम की तबक लेपन चथरी इंटेलीजेंस की फंग पाउम की मतुंग इन्ना थीबोम की तबक चथब इम्फालिस डिस्ट्रिक की टॉप अवांग लेकाय मखा लेकाय लालहब मोय अनी फाखे फारब मोय इम्फाल इस की खुरा निंथ लेकायदगी अतोप जिला की मनुंग चनब पौरा भी अवांग लेकायदगी पाउसी मखा तान हाय राज्य की पुलिस ने लालहब इम्फाल वेस्ट की कमांडो कॉम्प्लेक्स फारे फारब मोय मया इम्फाल बाजारदगी हौजना मया इम्फाल थाना अवांग लेकायदे सिक्योरिटी फोर्स ने मया का निशा की मायोग चंसीलप खोजंग की मनु चना इम्फाल इस जिला की कोईरेंगे सीएमसी हॉस्पिटल मनाक्त की मोय अनी ब्राउन सुगर ओगनी चिंगना पोलम सिंग कोनना फारे फारब मोय कंगला तोबी हतीब खुआ कंगला तोबी शांतिपुर मोय अनी कांगपोखी जिला वीडीएफ ओइन लेबनी ब्राउन सुगर ओगनी चिंगना पोलम किलोग्राम ग्राम सामब्री कुनमंगा होंडा एक्टिवा फगत पंगमकी मणिपुर पुलिस ना इम्फाल शहर की अकोबद आईन कई यूल मोय मरी फगत की फारब मोयल यु फगत की हाई इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश उड़ीसा आंध्र प्रदेश की समुद्र खोबासी अखा अराव अकन नौ चूरब हायना ओरेंज एलर्ट लाथोरे कर्नाटक केरला माहे लक्षद्वीप पुदुचेरी तमिलनाडु कराईकल की तोान तोान मफमसी अकन नौ चूरगनी चंडीगढ़ हरियाणा दिल्ली उत्तराखंड नोचूबंग उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड नोचूब बेंगोल सिक्किम की मफम अखा अराव उफुल सत्कनी अवा नोप राज्य लाली का हेन साब की अवाब मायोनरब ये तबीर पाव से आकाशवाणी इम्फाल नोचूब एसिया होरकब फिवम भारत थाउ चा तक पोलम हार अतई तंगाइफद पोलम वातन फंगनगनी सरकार ने हाई नई दिल्ली नोचूब एसिया फिवम की मतंग पांथोप मंत्री की मिफम सरुक या कंजुमर एफेयर्स की एडिशनल सेक्रेटरी अनुपम मिश्रा ने हाई भारत चा तक पोलम लौसू की पोथो चिंब की स्टॉक मरम कई मांग हाई चेंग की पोथो की चांग हेन पुथोना मेट्रिक टोन लाख लिशिंग अहम चात्रेट हूं तरुक हवाई की मेट्रिक टोन लाख चनी हूं मरी पुथोना अनौब रेक

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भाई ला चंगला फमजे ला भाई चंगले आई चे तुबी आई को की सोन दो थारो प्ले तो मंगा तो पिबी हो चे तुबी
1: होय होय पिरागे पिरागे
2: युबे मा खुय की सु थारो दो लुपा सा को देख तंबी अदुगा अलु रंगो बगा मंगल ताव बगा दो मिक्सर होय न खरा अंग पिबी रो
1: आ फनी फनी तमजे रखे
2: सिने यारानी ना हालो खो
3: यारानी सर
2: आई खुय गंपु सिबो केयानु ने लाई सिबो
3: आई खुय मंगा ने सर दिका बिनोसु यौरानी
2: सर ओ बिनोसु लाखने बा
3: होय सर
2: ओ
1: इबुङा से नङे थारोसिदा लायरे
2: बा मसमसिदि लुखोय
3: आसा
2: थुबिगि मसमसि हुने
3: होय सर
2: मसमसिदनि मि ऐन गाउसे सोली सोली बसमला हंसिना निन्दु योङ थादो मकैनो मैते योइबो नुक्सिरबो मनमम सुचेली नै नुक्सिद्रने माइसेङि मनमसे
3: नुक्सिसा
2: हन्दम पोटपोटर पदने नम्मुने करि मनमनो यङो
4: थारोइ थोंबगी मुखथोबि मनममरक तुदा मागी समलांगी मनमबु फोखिद्रने सा
2: ऐन हायरि सिनिने लुखोय मनमदो टप टपने वानि मनमदु दने ऐन गाउरिसे
4: सा सत्यासलादि एखोय सारबो अतोमबी ओइन लक्षिनबंगमबिगद्र
2: हा याद यालोमनि लुखोय महारानी गुमथमगेन सैत
5: सक्तासिसिगा नंजे सारिस सैशानि सिगासिया
6: दिमा नंगु आंगांसिगि थारोय थोंबायदु पिबिरुरो ब्रो
1: पिरुरेमा असोंद फमिबा हनसिंगसे इमाना खरा पिबिरुरो
6: हो हो इमा पिरुरगे इस सिंगुने मात लैत्रिने खमथोंनि सिदिया मीदि कन्न तिंखले इया
1: ओ आइ खाइर अगेमा
6: या गद्रेनिया
1: यानी
6: चलो चलो इमादने कित खाइर ओ
7: निया कई कई लेरिया
6: ए या कबुला एदना
7: ओइने ओइने मैताले साबदो प्रेत मंगागा सिंगैबा मतेग तंबिरौबा
6: हाइमा नंगने सिंगैबा खाइरगनिया इने निंजेंग ए हिङोय नचंदो सिंग खाइखिबनि नंग अंत पांगबीरो चोबायबुङो
7: हा इने थबीबुरो
6: ओय
7: आइ खायुगे नै खायुगे
2: कनो अनोने हे सिबुलुको सक्सि किंग्रेदा नति मागी दुबो एखोइदरो
4: खंगदेर सर थबीगी मोंखम संगबो ओइरिनि सर
2: हा मदु ओइ दाय
7: थबी
1: हा हमा दागोबुरो
7: सिंखायो आइ खायबिगेसे
1: ओ खाइबिगे हाइरो
7: औ आइ खाइबिगे
1: खाइबियुने
7: चलो चलो आइ पुबिरागेने इनेदो मथनदवा होरबनि
1: होय अददि आइ चलेको दाको ब्रो
7: चलो चलो आइ पुबिरागे
5: अशुक नो क्रबम कुचिना सिंग खाइरमि बनिने हिंगन बगिलान फमदा पुंसी सिंगसिना थेंगनारिबा थौदोक सिंगसे मखल मखल को
6: मा आइ गैतर उगे ए ए अदुदिने से बोरा से उत थादर ओ इमा पोसिंग ततमगे
1: होय आइ बोरा थादरगे
6: हाय बिमा खुरुम खोंगि से तादर नंबो ताइमा नबुम हिचाबदो हलब्र करिनो मागी थोंगान द आंगांग सिंगना गारी गा थामजलम बजालने अदुमाले इमा
8: करम बगदानुने मी थोंगान गारी फैजलिसिबो
6: चंग हायरु चोदना कीब्र
8: हेरो नंगजु कीब्र गायन
6: ना साइदि होरन खोंगिसे मना सिंगदो ताद्र कैनो कोक थोंगलो ओदना उसितिना त्र मयसिबो
8: पै आइ ठिक तवे खंगिसे
6: हाय बिमा नबुंसि याम साउंग चंग इन हे
1: कमन तोनि सिदिमा
6: आइ याम तल्लिदा
2: हाय लेम्बा लेम नत्र
8: सर
2: थाजे देने नंगसु तुइबिगि सिङि मनमदङा बोला इरो
1: तंगे
8: नसे देसा थंगनाबसिद आइगि युमनेसा
2: ओ ओ ओ याम नंगन लेरमिने
8: होय आइगि थोंगाल द गारि म फैजनन लेरबा मपु यावब्र हंगिने चंगजेर पनिसे
2: ए ए ए आ गारि ब्लू मसु दुरो
8: मानिसा
2: ओहो ए लुखोय
9: सा
2: नंग चलो गारि दो ममें तेलि थुस
9: फनिसा ए
2: अदो केनो फंगो दन केनो मसागिसे
8: अच्छा
2: थुइबिगे थरो जिदेबा टप टप महो मने मिलेम बा सिंही मनम न नुक्सी बने 타로이기만 남는 눕시리바 능 놈이 레마 능 땅자답더니 아콘 펑콘 게 놈 자기시네
8: 아이기 패밀리수 야호리에사 아이 역절하러 아이 독절하겠사
2: 아바 파라파라파라 어디 파라
3: 담아 토게 해로 내 곧 사 터기 싫겠노
8: 야레 나테무스 야오리 아이 타로리코
6: 이씨 톡디 톡리니 강나바 야오로 많이 내 토비야
1: 난 파리마
3: 이냐 아이 코기 깨야 따라
6: 아 이봉옥이도 아 짱꾼 따르마네
3: 오
2: 누코에
3: 사
2: 아이 마 반달이라 먹게
3: 반이사
2: 아 도 이나에도 강미고
3: 아 회사 이냐 배사장들 로비 이냐
6: 아 야래 야래
3: 아도 이냐 워로부디야 되고
6: 거리
3: 아이 코이 비에 뭐 토이비기 뭐 삼세 어떤 거 보자 그래 사이던 으로 딱 어떤 거 보자 그래 삼시다 루리시 거리 누워 하더느냐 이 코이 이거 삼이 사였나 아무것도 뭐 해야 돼 내가 따라 이봐
6: 아이 부모 아 나선기네 삼다 루리 바시 아따 이게 슈나띠 하와이 자라 마히니 카 하이비 우노이 사르두다
3: 하
6: 이마시디
3: 아 이네 아이 아두 하이자로 오게 아이 아이 사사
6: 어 야래 야래 부모
7: 이니에기 뻑쿰드나 이페파지 하이닝이니 항닝이니가
6: 거리마 실레이드나 항제 사리노 강디 뭐이 자독도 자르가 꼭 만코드나 거리트에나
7: 니야 뭐이 파티시에 마닝콤바 파티니네
6: 아 마니 마니 부어 하이잉디니야 호텐세 카랄로이셀로 뭐이나 하이타레 아 비마 낭 다카우부기니야 자동 타하우나 셈비우 셈마게이마
7: 퇴비 Nangi borado bu makungam telitra bra.
6: Makumaina taningi ro da kobro.
7: Horen chaka charu ge tongi da. Changam hou do ba.
6: Adu makum natra su haura ga loira do bu.
1: Hawiyo hawiyo hawiyo.
6: Da kobro. Sa si de lere.
7: Yare yare. Thobi nangu jik tamni se kain.
6: Manipur University da ne biochemistry da master tauri.
7: Oh, biochemistry da. Adi diam paina.
6: Khangde da da kobro. Phanen exam so kitangai re. Hotien ge thabak singsina ba. Su nai nai de.
1: Khangdre dai bungo. Na san se karam tho dong no.
7: Thobi, ai su Delhi University da biochemistry da master tore.
6: Oh, da kobro su. Adi di lusin la banatro.
7: Ai di lusin mading ang kidre.
6: Kai gya?
7: Baba na heart attack tau tu na hek lai khida badagi ai khoi gi mung su kang khong sai ki ai gi makha tam thana bagi sen thavi na ka na su lai ki ai gi khot na ning ba su loi na mang ki
6: o da ka bru da su baba lai ta bagi awa ba se phor mi ja wa re ko
7: thoi bi
1: ka bru a na sin no pa ne wa ri sa na ra mu ini ne lu khak sing dong da pheng do ki ge ko
7: khoi khoi ne ai su sa la da ba ni dai ne Tobi, I wonder like a Pavayamle, Kirke.
6: Mumming had on it, I hope.
7: Mumming would be Haraki, you, other girl, like the I wonder get them low.
6: Hoi, I hope. Cry the lake again. I wish she da, come here, Magasi, I'm got hungry to boo.
7: Kind of Tobi, like the Kimming, you can hear a girl, come check up TV.
6: Come in at the Zara by Zara, Zara,
7: kind of in a hide.
6: Emma. As as kolong ga chi ga thiri ne gi se
7: university gi thak ta mai tam li banang na che kolom hai ga da bada khabai che ga haing exam da di karam tok doi ba
6: da ka bro iba matam da budi wa khan da leba duni da idori se sin da panga ngang busina amani Luri badi wakhan da leibaduni
7: Shumi, luri badi miwai bagi wakhan da leibaduni

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज की थोड़ा हमने
1: हेलो
0: हेलो ताज़री हाय बियो ताज़री ताज़री हाय बियो
1: मंगो यूं यूं में कई देगी इबीएम तक सोना जाने में दा
0: इबीएम से करी लम देगी हाय बीबा
1: वांगो देगी हाय बी
0: होय होय वांगो वांगो देगी इबीएम चाहिए लाइन से खजिक तंग सोवी को हाय बियो हाय बियो
1: मैडम आई ना थी हाय जे अखोय अहल होय बजिन जे डॉक्टर जजु और खनिया सिटीजन गे दुम लाई मफम मफम खुदिंग द लया दो आई ना हाय जे नी जे दुकान से पबु होय अहल होय बजिन जे पोलै बला को द मोजे अहम नि हाय रग अतै लै बजिन दो आसंग रह लग कुमार के पोतो तंबीबा दे सोरो मत लांथो जु अमा दे अहम नि ना महा मन खुद समग लांथो पिबा मैडम अदु आई ना आई वा खलन द ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯅꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯕ ꯌꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯒꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ
0: ꯍꯣꯏ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯎꯠꯄꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯔ ꯑꯃꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣꯀꯣ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯄ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯏꯕꯦꯝꯆꯥ
1: ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯕꯦꯝꯆꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯕꯦꯝꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯣꯂꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ
1: ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज के थोड़ा नहीं करना भी रवनो।
1: गुड आफ्टरनून मैम,
0: गुड आफ्टरनून।
1: आई कैन वंडर लंबी खुलते की भी मौलता नहीं मैम,
0: लंबी खुलते की कनाही भी बा
1: बीमोता
0: बीमोता होय बीमोता
1: आओ बोल मैं वास्ता नू आई थी ऐसी
0: होय होय कोई की नोंग चिंगे फिवम से नोइरम बसुए आई नेटवर्क से
1: हाय मैम
0: होय हाय बियो हाय बियो।
1: वही अमन जब मैम द थैंक यू सर ये ना तो जरा कहूँ मैम
0: हाय बियो करन बहुत फम ना
1: कोलर में हम हाय दो सब ना तो जो हाय जी दो अकोई नपी हो जैसे यूं बांग जब वो मतलब दा इना इता लाइट दी निगों ये दी लोए रे दी हाय नहीं है मैम को अदू वो जब इगों इपा मैं आम से ना कोई दो कचना यंग बी देना कचना नुक्सी ना लोई ना बी रजा दी कशुम ना ते बा मतलब नहीं आता बनी ना आई इमा आई पादी दम मतलब के कुंगो मतलब ये ना ससरी बनी है दुना ये हवी भाई बोल पादी दुना इमा आई पास करना अदम लूना तो भी लगा दी कशुमन ते अदमाई ना निवाल हो जाती है लूना ले हवी भाई बोल पादी ना दम शी ना लोई ना बियू ना हाइजर नहीं है मैं
0: हाय हाय मसी मक्सुल लोई ना बिवो इशन निंगो लोई बेखै
1: ना
0: बु
1: बिदे बे आम लाये मैं
0: हाय हाय मयाम मखल मथेल है बदुनी खुत पान ब खुत सा मंगा मक वांग ब चाव ब माना दब ग मी कि पुकचेल अदु ग थमोय माना दे है बदु तारे को अदु ब अचुम बा फ बदु दे खै पुम न मखंग मि नसी अदु ग।

धन्यवाद निरुपमा। यह आकाशवाणी इम्फाल का शंघाई चैनल है 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। मैं वाईखोम सिंह खेंगानबा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत प्रस्तुत है सन 2015 में रिलीज हुई स्पाई थ्रिलर फिल्म फैंटम से अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत प्रीतम का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म दिल बेचारा से मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाजों में, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत ए आर रहमान का। फिल्म दिल बेचारा हमें जिंदगी की महत्ता को दर्शाती है। आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आपने सुना फिल्म एज एन विनोद से हमसिका अरिजीत सिंह और जॉय का गाया गीत, गीतकार अमिता भट्टाचार्य और संगीत प्रीतम का। साथियों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के संगाई चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम गीतमाला। अब सुनते हैं फिल्म सिमरन से सुनिधि चौहान का गाया गीत, गीतकार है प्रिया सरैया और संगीत सचिन जिगर का।

अब सुनते हैं फिल्म बदलापुर से रेखा भरद्वाज और अरिजीत सिंह का गाया गीत। गीतकार है दिनेश विजान एवं प्रिया सरैया और संगीत सचिन जिगर का।

साथियों, इस गीत के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए हाजिर है थौदा निरुपमा। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक मिकु खरगी मनुंगदा चैनल असिगी मखा ताब तारकप थौरम सिंह कंगला चैनल दगी ताब फंगबिरगनी
1: जिरे तबिरिबासी आकाशवाणी इम्फाल नी हौजिक खुंगंगी थौरम संदुक्सरी

0: ताबिरे याइफयुम्बा लीला मचा आइसु नते नंगसु नते लाइन तारे लीला असिद सक्तम लांकिबसिंदे रोमेश की सक्तम दा सक्प्रम रमेश चंद्र दसुमती की सक्तम लांकिबी कोयरोम शशिकला काउंसिलर थोबी की सक्तम दा हाइग्रुजम जमुना थोहेनब की सक्तम लांकिबा हेमचान निंथौजम लीला इब वंखैमयुम अनीता देवी लीला पुथोप थोक्सोम रेनुबला लीला पुथोप तेंबांगबा हेमचान निंथौजम
1: याइफयुम्बल दयुम्फमोइब लीला मचा आइसु नते नंगसु नते लाइन तारे हाइरिबासी थौरमगे अनिसुब अरोइबोइना इचलेनाउ तामिनारे
2: तामिनारे चेबेमा
1: लीला इब वांखैमयुम अनिता देवी पुथोकपद तेंबांगबा हेमचान निंथौजम अदुगा थौरम पुथोकपिना थोकचोम रेनुबलानि हाइरिब लीला मचा सि तामिनखिबग लोइनना ngasigidamakta खुंगंगि थौरम लोइसिनजनबगि पोंजादुसु यौसिलकले इचलेनाउसु मतांगसुआइदा हननब तौरसि
2: फनी फनी चेबेमा ननाउसु हनजख्रगि
1: खुंगंगि थौरम ताबिरिब सिंबो इचलेनाउना अमुक्का हन्ना
2: खुरुमजरी

0: गुमगंग थोरम ताबीरे ताबीरी बासी आकाशवाणी इम्फाल नी।
1: हाय डोली।
2: हाय
1: ना कुरे नंग अदु केन लाइदो काय सके हाय नो
2: आई की दुकान म हांग बदो एडवर्टाइजमेंट नम ता हाब के ना नहुं द ताना गिन ला इनी
1: ए यम फे के नो दु दिया करी करी नो बनंग की दुकान तो फंगे का हैरिस ना
2: आई की दी वैरायटी स्टोर ने होलसेल सु अदु रिटेल सु दुम याव रेदा
1: ओ अदु ओरे दिने ओली दिया रे दु इनफा द कोक चलु या द्रो नंग बो
2: ओ अदु मी लोइन मक त योहन बबुंगम दोरी ब्रो दु बो
1: करी की नबोय दोइनो हाय चिंखोंग सिंगया द नतना अहल नहा मेकुम टिक न तांग रिबा सांगाई चैनल हाइब अमग ने कंगला चैनल हाइब अमग अनी लेर बनी को हुजिकतिया
2: ओ ओ ममल दि के आहर तोय जा नो अदो आईडी या मग दि त लिगो
1: इस इस ममल गी का सु खली माले
2: खंड रे दि कै नो नंग बो
1: लुपा समरी संगमा द गी हो रग ने सो इस मया मम सु ले र मि दोले
2: ओ ओ अदो ए ता रग दि ख्वाइ दि फब ऑप्शन सी मसिन ओइ रे नी न दि खले
1: तो तो तो तो ओइ दोइ दे मसिन ख्वाइ दि फब
2: उम न मकु तराम नो उपचरी आकाशवाणी इंफाल की कमर्शियल सेक्शन दा लिंक्शन बिदउ अदोम गी पाउजेल मियोय लाखा कया

0: बताओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलो भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
3: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

सच मानिए इस पल पार्क में घूमते हुए ना ये गाना अलग ही सुकून देता है। वैसे भी अभी मौसम बड़ा अच्छा सा हो रहा है क्योंकि अभी धीरे धीरे सुबह हो रही है, रोशनी आसमान में हो चुकी है। लता जी की आवाज में बेमिसाल फिल्म का ये गाना था, आनंद बख्शी के बोल और आरडी बर्मन का संगीत था। आज 3 जून बुधवार है, यह 2026 का 6 नंबर का ये महीना चल रहा है। मतलब समय को तो मानो जैसे पंख लग गए हों, इतनी जल्दी टाइम बीत जाता है। खैर, भोर सुहानी में मैं पंकज हूँ आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। जैसे जैसे सुबह होगी गर्मी तेज होती जाएगी तो खुद को ठंडा रखने के लिए ठंडे पेय पदार्थ जो है वो पिए और कोशिश करें कि तेज बाहर जो है धूप में, जब तेज धूप हो तो बाहर ना जाएं, वरना अगर जाना पड़े तो छतरी की छांव में ही बाहर निकलें। खैर, अभी के लिए आपको गीला गीला महसूस करवाने के लिए ये लीजिए भीगा हुआ गाना और इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूँ।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।